0: सतगुरु स्वामी माधवानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सब ऋषि मुनि महात्माओं की, मात पिता गुरुदेव की।
1: Yeah.

husband and your wife? She said, but we'll not. And I said, no, you are kidding, but one day. फिर कहते मैं कहाँ जाऊँ मारे वो कटे गियो. यस दैट्स वाई लाइफ बिकॉज वी आर द ह्यूमन वी शुड नो दैट दैट्स इट. अदर्स दे नो दे हैव लर्न गॉड हैज गिवन एग्जैक्टली. सो दिस वन सीड गोज इन अर्थ स्प्राउट्स इट्स कम्स अप फ्लावर्स एंड then now very nice leaves, it will fall down, new will come again. The same thing like humans and this, everything. But more is to there. Patta tuta del se le gai pavan udai. Ab ke bichare kab mila? Pata kahan milega, kahan jayega? आज हम हैं सभी साथ में. वी आर ऑल हियर एंड वी विल बी टू हर होप वी होप बट इट कैन बी दैट वन पर्सन इन अ नाइट वी विल बी नॉट एनी मोर देयर. जीव पक्षी जाता है वो पक्षी पक्षी रे वो कहते हैं कि नहीं. हरि ओम. प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ट्राई टू कैच हॉरिजेंट और हाउ टू गेट द हॉरिजेंट टुमारो आई विल टेल यू. हरि ओम. दीप नारायण भगवान की. नाउ द बॉयज कम दे आर कमिंग द स्टूडेंट्स. Oh.

0: Come a little back. Thought of. मेरे पीछे आओ या मेरे पास में, अब दोनों एक साथ साथ रहो बेटा। और मास्क निकाल दो। साइड करो स्लो। थैंक यू।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय।
0: थोड़ा दूर है।
2: हिंदी सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय।

यज्ञकं समिमं दधातु बृहस्पतिस्तनुता मिमन्नो विश्वे देवा इहमादयन्तां सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः

हथेलियों को अच्छी तरह मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठा सो अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं, ये जो पृथ्वी है माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे कि अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य जा वो जाता है मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं,

0: एक अच्छा कर्म परमात्मा के का मतलब किया हुआ, परमात्मा का नाम ये किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानी भूतानी आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत। सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा, कहते हैं ये मूक प्राणी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको, ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो। यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं, पूज्य गुरुदेव मादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की, रात भर सेवा की, तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है। मत वो शांति सेवा से मिलती है, तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा ना, ओईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य सुदिनम। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my
2: people.
1: Okay.
2: In America.
1: Okay.
2: To Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
1: Okay, Yoga and?
2: Daily Life Foundation, Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Daily Life
1: Yoga
2: Foundation.
1: In?
2: Yoga in Daily Life.
1: Yoga in Daily Life.
2: Foundation?
1: In Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that, friends, let's come together, let's help our neighbor. Let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi. And all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me and we'll find a way to get the money and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
2: In rupees?
1: Yes.
2: Thank you. Ke dollar?
1: De paise.
2: Among us, there is sitting one Brahmarishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, Nepal ke liye. So, Brahmarishi ji aaiye aap, and please sing one bhajan. Darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Misri Lal ji, Brahmarishi, P. Thaula, Nagore.
3: नागौर दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण सभी सज्जनों 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे 84 लाख जोड़ में 27 लाख घासपूस 9 लाख जलपान 11 लाख ईट पतंग 10 लाख पखेरु 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोन है 4 लाख मान का जोन के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है 3,99,999 मनुष्य है लेकिन बिना सिंह पूछ के हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे बिना सिंह पूछ के जो मान लो ज्ञान नहीं है विवेक नहीं है दया नहीं है समा नहीं है शीलता नहीं है शुचिता नहीं है समता नहीं है तो मनुष्य कहना चलना लायक नहीं है तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज ऐसी दिव्य आत्माएं हम ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज की इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर, क्या जहां दया है कबीरा हम आए संसार में।

जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो माधवानंद जी महाराज जो है ना, मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि मैं महाराज जी श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहाँ बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। क्या

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पसंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज विनय के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या। जब परमात्मा की कृपा होगी

ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय।

0: दीप नारायण भगवान अलकपुरी समादेव देवपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन भारत माता की जय।
1: विश्व गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण महीन्महिषागौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सद्गुरुदेव भगवान् की जय ॐ शलपुरजी महादेव की जय देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय श्रीदीप नारायण भगवान की जय हिंदू धर्म सम्राट परमहंसम श्री माधवानंदपुरजी सद्गुरुदेव भगवान की जय विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंसम श्री महेश्वर अनंतपुरजी गुरुदेव की जय

जो सदा चरण सेवा विघ्न हरण मंगल करणाम धरणा परस परपान पार्वती नंदन नमो श्रीदीप।

सुख सागर निजना नामलिया सबयो भरे आनंद हो तय पार। आप सतगुरु मैं शिष्य हो आप मम प्राणाधार। परमहंस गुरुदेव जी तीन लोक के देव सुर नर मुनि गुरु संदाता नहीं सब जग मंगलार।

सत्सन शिष्य दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जन गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा सेवकने नचको अष्टपहर।

आपोयो प्रकाशे आपो देव सब देवी आपो सूर्य प्रकाशे आपो ब्रह्म निर्वाणी आपो चौवर के वासी आपो वेदो के ज्ञाता आपो भक्तोर वासी आपो सतनाम के दाता आपो नित स्वरूप के ज्ञाता

0: जानकी
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय,
0: शुभ रात्रि।
2: स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

प्रदीप नारायण भगवान की जय। गुरु नानक जी महाराजा की जय। प्रदीप नारायण भगवान की जय।